offended. Don't angry me. Minded. अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है. वो घर पे आता है.